0: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईँ हाम्रो अटुट साइनो।
1: साहिनो समय सूचक अहिले साँझको 6 बज्यो 6 PM।